सखी इच्छे करी। सतगुरु बड़ा प्यार ना समझाते तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज जिन्हों बारे वचन तुसी पढ़ते हो, धरन गगन नवखंड में भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाणे आवे, कन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत न आवे, राव सस किरण उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। वेखो किन्नियां ना गिणिया जाण वालियां वस्तुआं दा जिक्र कर रहे ने भट्ट साहब। जिहड़े बदल ने उन्हां चों बूंदां गिरदियां, कोई साइंस वाले आ जाण गिण लैण, कन हर बूंद बसो रुमावल। आ जदों बसंत दा महीने च फुल खिड़दे आ बनस्पति च, किते वह भी भावें कोई गिण लवे, पर औखा वा ना कम। कुसम बसंत गणंत ना आवे, राव सस किरण उधर सागर को, चंद्रमा सूरज दियां किरणां कोई गिण लवे, सागर दी डूंघाई रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाण। इन्नी वड्याई बख्शी है गुरु ग्रंथ साहब जी विच गुरु अमरदास महाराज। ते वो बचन की कर रहे ने, बड़े प्यार नाल सानू समझा रहे ने, गुरमुख सखियां सखियां क्या साड़ियां सुरतियां नू, सुन सखिए मिल उद्दम करे हा, मनाए लै हर कंते, मनाए लै हर कंत। सारे सुरतियां उद्दम करो, तरले जोदड़ियां मिन्तां करो, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। किंतु इन्ना उद्दम करो, मनाए लै हर कंत है, होमे छड़ दियो, मान त्याग कर भगत ठगौरी। आ जिहड़ी कर रहे हो भगती दी ठग बूटी लाओ, इन्हों मोह साधु मंत्र, आ साधुआं दा मंत्र वाहे गुरु। कहिंदे इहदे नाल मोहिया जांदा, कहिंदे जदों फिर मोह लिया ना तुसीं, वस आया फिर छोड़ ना जाए, ये रीत भली भगवंत, कहिंदे फिर नहीं छड्डदा, उहदा बिरद है। अगे फिर कहिंदे सखी इश करी नित सुख मनाई। देखो किन्ने प्यार नाल समझाउंदे आ सखी साडी सुरती नूं, कहा कहिंदे इहो ही सुख सुखदी रही तूं। आपां कहिंदे ना सुखणा सुखणी आ, सुख मनाउंदी रह। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। आस की है जी, कांखी एक है दर्श तुहार। सतगुरु नूं बेनती करिए जी, ये कांखी ये आस साडी पूरी हो सकदी आ? कहिंदे अजी दे अगे अरदासां बेनतियां कर रहे हो ना, उन्ने करनी। इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर, किन्ने करनी है जी? वाहिगुरु इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर, जाके वस है काम तिन। वो नाम नू काम तिन भी गया किते। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मन। किते सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। हुण जो बेनती करांगे, जो मन जोड़ के तुसी कर दे हो, ते वो ना मन्नेगा, फिर मन्नेगा क्यों नहीं? कहिंदे पर तुहाडे होवे ते सही, कांखी एक दर्श तुहारो। की किया उन्होंने? इच्छा पूर्वक पूरी करेगा, इच्छा पूर्वक है वो पूरी करने वाला, सारा सुख देने वाला हर, सर्व सुखदाता हर, जाके वस है
ਕਾਮ ਧਿਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿੱਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ।

अहंकारिया निंद काम पेठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवे अंत लै छाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है जिस दिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय।

सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु घर की वडियाई देखो कि सिख सीधे ही सिख गुरु नूं पुछ लैंदे ने, अधिकार है ना संगत नूं, राइट। कोई दुनिया का बादशाह होवे तो उन्हें मिलना होवे बड़ी मुश्किल हो जाती, मिलते ही नहीं। जो लोड़ होती उदो दुआरे दुआरे आते हैं, तो जो मतलब निकल जाता है फिर लभदी नहीं। लेकिन गुरु ऐसा है, गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक, जे किसी सिख ने मन च चितवनी भी आ गई, चितव भी लिया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो किसी दीदार हो जाए। एक साखी आती गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बारे, श्रीनगर का जिक्र है, माता है श्रीनगर, उन्होंने हाथी धन गुरु हरगोबिंद साहब वास्ते शॉल तैयार किया, मन च चेती याद कर दी कि गुरु सच्चे पातशाह मेरे को तो समर्था नहीं कि मैं उत्थे पहुंच सका, कि गुरु ही आ जाए पुछन। सिख सिख का तो गुरु का रिश्ता वो है, वो कनैक्शन है जिहड़ा दुनिया च किते भी नहीं मिलता। जिथे सिख गुरु का प्यार करता उत्थे गुरु भी सिख दे नाल ओना ही प्यार करता, सगो उस तो भी ज्यादा। एक दफा प्यार रखो सतनाम वाहिगुरु। हिस्ट्री कहती इतिहास कहता उस माता दे कोल जाके धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने दर्शन दीदार दिते, उन्हें सुध बोधी ना रही, दर्शन देखत सुध की ना सुध रही, मत में ना मत है, उन्हें अपना भुल जाता। जो बंदा विस्वाद हो जाता ना गुरु नूं सामने देख के, है गुरु हरगोबिंद साहब सामने खलोते ने, साक्षात खलोते ने, पीरी पीरी दे मालक महाबली जोधा, पर उपकारी। पिछे भी आपां जिक्र किया इस स्थान तो कि वड जोधा बो पर उपकारी, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दी कृपान दे विचों दया निकलती। वैसे तलवार दे विचों, कृपान दे विचों, शमशीर दे विचों जिहड़े रजवाड़े राजे होए ने उन्होंने जुलम ही किया। जे परोपकार निकलिया है तो साढ़े गुरुआं दी कृपान दे विचों निकलिया है। एक दफा प्यार ना को सतनाम वाहे। माता जड़ी सी उन्हें चेता ही भुल गया, कहन लगी शुक्र है तुहाडे वर्गे पापिया नूं साडे वर्गे महापुरखां दे दर्शन होए। उल्ट गल कह गई ते सेवादारां ने गुस्सा किया। श्रीनगर की गल मैं ते सेवादार ने गुस्से, गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कहन लगे ना कुछ ना कहो, ये अंदरों लफज कुछ होर निकलते पे ने, बाहरों जीव तो उतो आके अखर जड़े पलट जाते पे ने, वर्ड होर हो जाते ने। अंदरों ये कह रही है कि मेरे वर्गे पापी नूं तुहाडे वर्गे महापुरशां दे दर्शन होए ने, लेकिन बाहरों कदी कदी किरत गलत हो जाती है, लफज गलत हो जाते। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाणी। मैं बेनती कर रहा सी कि गुरु दा ते सिख दा ऐसा कनैक्शन है कि गुरु जिहड़ा संगत विच बैठ के सारे फैसले करदे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़े सन ओह संगत कोलों पुछ के अपनी राय जिहड़ी सी लैंदे सन, संगत नूं इतना महान दर्जा दिता सी। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे जे तुहाडा कोई ना ना बने संसार च, कहे मेरा कोई नहीं हैगा, मैं कल्ला ही रह गया, ते गुरु की संगत नूं अपना भाई समझे, गुरु की संगत नूं अपना माई बाप समझे, इत्थे आके अपनियां सारियां गल्लां शेयर कर लवे क्योंकि संगत है। जदों गुरु हरगोबिंद साहब दा रिश्ता करना सी तां गुरु अर्जन देव महाराज ने संगत को पुछ कीती, दसो सार संगत जी किवें करिए, चंदू की बेटी का रिश्ता प्रमाण कर लिए। संगत ने कहा बिल्कुल नहीं सतगुरु सच्चे पातशाह, इन्होंने हंकार की गल की कि चुबारे की इट तुम मोरी नू ला आए हो, यह हंकार की बिरत है। साध संगत ने कहा नहीं रिश्ता करना, गुरु अर्जन देव महाराज कह लगे बिल्कुल जिदा संगत कह रही है, जिदा सिख कह रहे हैं,
ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਢਿੰਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ,

एक एफर्ट अपनी होंगी बंदे की, एक कदम इन्ना उद्यम तो करना ही पैदा है। जे इन्ना भी उद्यम कोई ना करे तो सतगुरु पूरा क्या करे जो सिखों में चूक, जे सिखां ची चूक होवे एक कदम भी ना को चले तो फिर गुरु की करे, पूरा गुरु भी की करेगा। एक कदम चल

आगरा शहर की गल है। गुरु जेड़ा हुंदा है ये दीन ते दुनी दोनों की गल गुरु के हाथ में हुंदी है। दुनियावी पातशाह की गल जड़ी है जेड़े बादशाह हुंदे ने वो दुनिया ते उन्हां दा अधिकार हुंदा है, किसी नूं जगह दे सकदे ने, जमीन का टुकड़ा दे सकदे ने, धन दे सकदे ने, कोई उपाधि दे सकदे ने, पर धन जिहड़ा ये सदा नाल नहीं रहिंदा। जमीना के टुकड़े भी कईआं दे कोल होए ने, उन्हां दे कोई मालक फिर होर ते होर होर दे होर ही बनदे गए ने। उपाधियां ते भी कई लोग बह जांदे ने, इक पदवी ते किन्ने ही लोग बह जांदे ने, जिहड़े बैठ के निकल जांदे ने उन्हां नूं लोग भुल ही जांदे ने। पर जिहड़ा दीन ते दुनिया दुनिया तो अगली जिहड़ा गल करदा ना उस नूं पूरा सतगुर कहिंदे, जिहड़ा अगले जहान दे विच वी बांह फड़े, जिहड़ा अगे वी जिम्मेवारी लवे कि सिखा जदों ते इस संसार नूं छड के जाणा अगे मैं तैनूं खलोता मिलांगा। गज क्या को सतनाम वाहिगुरु। सतगुरु ने पाणी सारियां गल्लां कीतियां।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेहि ध्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याही है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोने तख्ता ते प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। ऐस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप दे सुखासन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आप जी दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया रहना आई रहना आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आम दा नाम चेतावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

निर्वैर अकाल मूरत आजु निसै भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच

जपो मन रंग नानक पाए साध कै संग जय मार के गन जाय न कोसा हर का नाम वहां संग तोसा जय पड़े महान गुब्बारा हर का नाम संग जयारा जहा पंतरा को न से जानो हर का नाम तै नाल पछानो जय मा प्यान तप्त बहु काम तैर के नाम के तुम ऊपर छाम जहा तिरखा मंत दया करख तै नानकारा अमृत बरख भगजना के वर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरय जन कोट हर दस कर संदन रात हर हर औखद साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किनो दान मन तन रंग रते रंग कै नान जन कै बिरद बाबे कै हर का नाम जन को मुगत जोगत हर का नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जव का परे ना भंग हर का

पीत मन हर के नाम की मैं महुत नानक नाम उदरे पतत बहुमूत बहु स्याण जम का पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै।

मरण ते डराय सा जना की सरणी पराय जे जन को प्रभदर्श प्यासा नानी तं कह बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरु प्रधान साह संग जाके मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हरा नाम तिन काट काट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन नहीं ले पा निरतन को तन तेरो नाओ निथामे को नाम तेरा था निमाने को प्रभ तेरो मान सगल घटा को देव हो दाने करण करावन हर स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे अपन संगा प्रभ राते तुम रे तो तुम ते होए नानक न जान सको सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मतमल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक दे कट वस

नानक सी जय जय प्रसाद तर प्रसुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कामला जय प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस पाव करने तरसना तुझे त्याग

जानत सब सारे मुगद अजान सदा सदा भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्या कौटि संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सो सिर कर मानै जो हवन सो दूर परानै छोड़ दै तिसका श्रम करै संग साहि तिस पर हरै चंदन लेपो तारै धोए गर्त प्रित बसम संग होए अंध कुम पत बिकराल नानक काल्यो प्रभ दयाल कर

कैपिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुम सुगवन करतार करुणा में दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा उतर संग साई सो आवे न चीत दो बैराई था सुप्रीत बल वैखी ग्रह भी त्रिवस नंद केल मै रंग रसाय

निष्पदी दास वस्तु लाचे पावे एक बस कान बैठ गवावे एक पीना दे दास पी हरले तो मूड़ा कहो कह करे जिसटा कर सो नाई चारा तंको किजा साधन सकारा जा के मन लागा परम मिठा सर्वसोता हो मन उठा जिस दिन अपना हुक्म

मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्वस्त्रा मिथ्या रंग संगमया पेखा हस्ता मिथ्या त्रोह मोहाभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जब जीव हर के चरण मिथ्या सुरम पर निंदा सुनया मिथ्या पर दर्भ को रया मिथ्या नेत्र पे खल पर तरिया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण

कहत जय प्रसाद तर सगल सिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभ ठाके जय प्रसाद तद को न पहुचे मन सा सा सिमरो प्रभुचे जय प्रताप पाए दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे जय प्रसाद आपो कन पैरी जय मन तिस्मरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रको कब न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रो प्रभु अपने मना जिन तेरे मनमंत बनाई उठत बढ़सा तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन हट पर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद त्यो चार बिहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद रा सुंदर रूप सो प्रसिमर सुदान रूप जे प्रसाद त्रिनी की जात

जय प्रसाद बोल अमृत रसना, जय प्रसाद सुसा जय बसना, जय प्रसाद हजकर तल, जय प्रसाद संपूर्ण फल, जय प्रसाद परम गत पाव, जय प्रसाद सुसाई संभाव, सा प्रभ त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तो प्रगट संसार, तुझ प्रभ को बोलना मनो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्त तंको जाप, जय प्रसाद रे कार्य पूरे, तुसे जान मन सदा हजूरे, जय प्रसाद तुम पावे साच, रे मन मेरे तुता सुराच,

वनस्पति सारिका संग मुख जल होत सा संग मल सगलिख होत साग संग मिटया विमान साग संग प्रगटा सो ज्ञान साग संग बुद्ध प्रवनेरा सा संग सबोतन मेरा साग संग पाय नाम रतन साग संग एक उपर जतन साग के महमा वर्ण कौन पर आने नानक साग शोभा ब्रह्मा सुमाने साग संग गोचर मिलाय साग संग सदा पर फुलाय साग संग आवे बस पंचा सा संग मृत रस पुंचा सा संग वे सब की रहन साग संग मनोहर बहन साग संग न कतु तावे

सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी स्वे जन पहे नानी जन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल के रे नातम रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना। ब्रह्म ज्ञानी के सब परमाया। ब्रह्म ज्ञान कद बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी के दस अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी कुपरास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के

ब्रह्मज्ञानी सदा सदजागत ब्रह्मज्ञानी ओबंते आगत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कल सदानंद ब्रह्मज्ञानी

सजीवने मरता। ब्रह्मज्ञानी मगो जगजी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सभ्य प्रहाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी के स्वभाव ब्रह्मज्ञानी बने, नानक ब्रह्मज्ञानी।

धर्म नानत सुमल जिस लिखा तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिसनद्री आया दास संतन पाए तन पाया सदा निक निक टर जान सोदा दरगा परवान अपने दा को आप कृपा करे।

कई कोट होय पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन पर मैं उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी स्रो होते।

कोट पै अभिमाने कई कोट अंध अज्ञाने कई कोट कृपन कठोर कई कोट आपिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख न कराए

गोपनी करा बगशीस ता का लेखन गना जगदीश जियो बन शब्द के रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानी देवे देख बढ़ाई इसका बल नाई सहाथ करण ग्राम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तुझ पावे सोई फोन थियो कबो उच नीच में बसा कबो सो घर करंग हसा कबो निंद चिंद व्यवहार

कबो है पंडित करे बख्यान कबो मंथारी लाभ त्यान कबो तर तीर्थ स्नान कबो से साधम ज्ञान कबो केतस पतंग हो दियान जोन परमे परमिया नाना रूप।

आपस को करमंत कहावे जनमरे बो जून परमावे तन पूम का जो करे गुमान सो मुर कंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक अमृता के सुख पावे धनवंता हो क्या धनवंता हो कर कृपावे तिर स्वान के संग न जावे बोलस कर

काउ कौम बोझ सो कोए तिसका नाम रंगकंड भरोए सिमर सिमर सिमर प्रसोए नानी बेगन लागे कोए उत मन में कंदरंकार कर्म मेरे सद व्यवहार निर्मल रस नाम रस पियो सदा सुला कर लियो नैनो बेग ठाकुर का रंग साफ संग मन सब संग

अनेक ऊपर जो जन किया सच के कटिया जम की भाषा पार ब्रह्म के जिसमन भूख नानक जिसन लागे दुख जिसको जिन प्रभ जाता जिसको हर प्रभ अंचित आवे सो संसहला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरे जैसा सा तैसा जिस चाहे अपने कारण में आप सुमाया सोद सोद सोद सीधिया गुरु प्रसाद ता सब हो जाए जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोइया सथूल नए कथ जन्म नए कुछ मरे अपन चलता भी करे अपन जाम दृष्टन दृष्टा क्या करे।

सगल की चिंता जो सुनवाए तुझसे वृथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हृदय पब न से प्रभु आपे आप अपन किया कछ न हो जिसो प्राणी लोचा कोई ते सुबिन नाई तेरा किस काम कतना ने जपे करनाम रूपन तो नाई मोहे प्रभु की जो सगल घट सो है। धनवंता हो क्या को गर्भ जा सब किस तिका दिया दरब है असुरा जे को कहा प्रभु की गला बिना कहता वह जे को होए बह दाता तिस दे नर जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नान सोजन सदा अरोग जो मंदिर को थम थमन तो गुर का सोध मन स्तमन ज्यो पखान नव चढ़ तराय प्राणी गुर चरण लगत निस्तराय जो

कीर्तन गाइए। अनेक भगंते साधु राखे अर्गुन गाय अमृत रखे ओठ गही संत दरियाया सर्वसु नानक ते पाया। मृत को जीवालन हार भुख को देवता धार सर्वन धान की दृष्टि माए पुरु का लहना पाए। साब गए तिलकाओ करना जोग जो तिस बिंदु सुरुआ न होग। जाप जन सदा सदा दिन रहने सब तो निर्मल कर।

नाम त्या में सत गुण में जाको परमाय जन्म रे प्रिया वे जाय ऊज नित के स्थान जसना वे तसा नानी ध्यान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कराय कर रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभु न सिय कंकार नाना चल करे किन माय पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपने कीमत आपे

भवन नाम का समुद्र स्वर्ण सारवन करकर बाज से अपने नाम लाए नानी चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सजा का सत्य स्थान पुरुष केवल प्रधान करतूत सत सजा के बाणी सत पुरुष समय सुमण सतकर्म जाके रचना सत मूल सत सत युत पत सत करने निर्मल निर्मल सब जाय सब बले सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बदन सत उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत निर्द जय को नाम देवता की गत हो आप सत किया सब सत आप जाने अपनी मित गत जिसकी सिर्थ करने हर वर्ण बुझ करते विचार करते कि मित्र न जाने किया नान जो पावे सोवर थिया विस्मन विस्म पैर समाज स्वा प्रभु के रंग राजन रह गुर के वचन पदार्थ लय ओए दाते दो काटन हार जाके संग तेरा संसार दिन का सोवड़ पा

दर्शन सत सपेखना नाम सत सत्य अमनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सब प्रभगता सुरत सत सत जा सुनता भोजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप जन मान्या करण क्या त्रिमोल बछान्या जा कर विश्वास प्रभाया तत गया तिर मन प्रगटाया पै तिर निरपो हे बसाना जिते जित समाय सुमाना बस माले बस कटाए ता गोबिंद न कहना जाए बुझे बुझ नार बाबे एक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रति

साव साव सुमारे अपने दिन का पर्दा टाके अपने सेव के सर पर रखा है। अपने दाखो देव डाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव की आपत रखे ताकि अपने को ना लाखे प्रग सेव को न पहुंचे प्रग सेव को उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानी सो सेवा दाते बैठाया निकी गिरी में कद राखे पसम करे लस्कुर कोट लाखे जिसका साधन करता उतना को राखे देख रहा था मान जतन करतब पात के करतब जात मार न रखे वन कोय सर्व जिया का राखा सोए का है सोच कर रहे प्राणी जब नारी

तिस कै संग सिख उदर नानक हर गुण गावस्पति सतगुर सिख करै प्रतै पाल सेवक गुर सदा दयाल सिख गुर दुरमत मल हिराय गुरबचनी हर नाम उचराय

सदगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकारते अटे सदगुरु सिखो नाम तंदे गुरु का सिख उठभागी है सदगुरु सिख काल पल सुवारे नानक सदगुरु सिखो जी नाल समारे गुरु के ग्रह से वो जो रह गुरु किया कैमर मैसा है आपस गोकर का छना जनावे।

नहीं का जो परम सहस सियाण पलिय लया न जाइये नानक सगुण भागी पाइये सफल दसन बेखत पनीत परसत चरण का निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगाह का वह सुनकर वचन करना गाने मन संतोख आत्म पति

एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार गुण उठता वह सोतन अर सेवा ते पाप है। जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परित। जिस बाको करा भले करनी सा शोभा पद हर की सरणी। अनको पावे रोग न जाए रोग बटे हरे औखद लाए। सरण दान मेरे नाम दान जप नानक दरगह परवान। मन पर दौर के ना इंदै दुस्ताव से आवे ठाए। तंको बिघन लागे कोय जाके हृदय बसियर सोए। कलता ते ठंडा हरिनाव सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण होए। आस भगत पाए आत्म बरगास तिथ कर दाए। बसे अविनाशी को नानक कटि जम फासी। तत विचार कह जन साचा जन मरे चोका चोका चा।

तुम कैलवटा में मूर्ख मना सोतमित कुटुम्बर बिन्ता इंते कहो तुम कवन सुना था राज रंग माया विस्तार इंते कहो कवन छुटकार अस्वस्ती रासवारी छुटा डम छुट बसारी जिन दिए तुस बुझे ना बिगना ना बसार नानक पछताना गोरकी मत तुम ले आने भगत बना पर डूबे सने हर के पर करो मन में निर्मल हो तुम्हारो चित चरण कमर राखो मन माए जन्म जन्म के गिल बिख जाए आप जपो बरा नाम जपाओ सुनत खैत रात कर पाओ सार पुरुष को नाम से

फिर तो फिरत प्रभाया पर्या तो सुरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाया स्पति जाते जन जाते प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम साधना की मंगो तो हर पार में श्रद्धा पूर है सदा सदा प्रभु के गुण गाव सा व्रत में त्या वचन कमल स्वर आगे प्रीत पद करो प्रभु की नित नित कोटे को आदान।

जब निर्गुण प्रसाद सब आए तब शिव सिद्ध कहो कित टाये जब आप अपने ज्योतर है तब कवन निडर कवन कत डराए आपन जल तब करने हार नानी ठाकुर गम या पार अपना शिशु के अपन आसन त जनमन कहो कहा बिना सुन

मंत्र बतावे। कर्ण करावन करने हार नान करते करना ही सुमार। जब अपने स्वभाव अपन संग बनाए तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई जय सर्व।

मातपुरी अमृता के दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनुप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा शिव परवान त्रिजामे पुरख प्रधान जिस मन बस

सिमरत में देख ससियर सुवर्ण खातर में एक वाणी प्रभु के सबको बोले आप डोलना कब हूँ डोला सर्व कला कर खेला खेल मोल ना पाई गुणा।

ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब

शांत हृदय नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तब जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल पर घास सब के मैं सकल ते उदास सुंदर चित्र तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ये फल ते जन कह मुख पन है गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जप मन कोय सब जग में ता की गतो गुण गोविंद नाम चरण बाणी सिमर सात्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद पद के मन विश्राम कोट अपराध सात संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटाए जा कह मस्तक करम प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने।

कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे।

जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया त

अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाट तकड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे, जे को कह पिछै पछताए, तिथै

अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, अर्फीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसरीक है, निर्लम है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अभीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वाने समस्त निदाने, नमो देव देवे अपेखी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपल्ले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाते, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान भाने, नमो बाद बादे, अलंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभुंगी प्रमाते समस्ती विभूते कलंकंग मनाने कलंगी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगे स्वंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर गर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देव सुतर मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहंग, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संग सेनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा भृतकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता, परंग परंग परमेश प्रोष प्रोष पालंग, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग, अशेदीय भेदिया नामंग अगामंग, समस्तो बराजी समस्त तामंग, तेरा जोर जाचरी छंद। जले है, थले है, पीत है, पेह प्रभु है, अजू है, अदेश है, अपेश है, भुजंग प्रयात छंद। अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप, नमो सर्वाने समस्ती निदाने, नमास्तवंग नरनाथे, नमास्तवंग परमाते, नमास्तवंग अगंजे, नमास्तवंग अपंजे, नमास्तवंग अकाले, नमास्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सर्वरोग सोखे, नमो रोख रोखे, नमो सोक सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वीतंग, नमो सर्वज्ञान, नमो परम तान, नमो सर्वमंत्र, नमो सर्वजंत्र, नमो सर्वदृसंग, नमो सर्वकृसंग, नमो सर्वरंगे तरभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिज्ये अभिज्ये समस्तंग प्रसिज्ये, कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी, चरपट शांत त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अला कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग प्राणंग सर्वंग प्राणंग सर्वं तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता,

चकर बकर फेरा छतर जग मानी पुरथीन लोग चौदह के बिखे जग जा पिंजे जाप आ देव नाद मूर्था प्यो सबजे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्विश्व रचियो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अगार पुरखा देश धर्म धाम सो परम रहता भूत अलख अभेश अंग रागना रंग जाके जात बादल नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुग दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुर गभूत गर्भ गंजन सर भंजन आदुरूपूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र ना जाने जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भाखत नेत

अनुभूतं अभंगतमित अपार गुणगन उदार मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वापर्णाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर निर्नामे अकामे पुजंग प्रयात शांत चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दान्य चत्र चक्र जान्य चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र गाले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी शांत न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र पृथ्वी।

अकर्ता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकर्ता अकृत है अमृता मृत है अजवा कृत है अमृता आमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपाय।

है, अरगंजन है, रबतापन है, जपजापन है, अकलं कृत है, सर्वा कृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संसा, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संसा रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंगे, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अभंगी स्वरूपे, अनंगी नामे, त्रभंगी त्रगाले, अनंगी गावे, एक श्री शांत अजाय अलाय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरग नरंग नरेप नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अकर्मंग अपरमंग अगंज अलेखे पुजांग प्रयाद शांत। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंग करियंग करीमल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुआ प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं शराबग शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर योग जती के सूर सुरार्दन सुसुधा दिग संत समूह अनेक मती के सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राण बधि के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के मते माते मतंग जरे जरसंग अनुपतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू प्रेबित न्याप शीसना जात बिचारे एते भय तो काहा पाए भूपतंत काओ नागे ही पाए पधारे जीत प्रय सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ जान के सुंदर हिंस ही हराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत गौन करै नहीं जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बिन अंत कुंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम नेक बसेखा वेद बरान गदेव ग्रान जमीन जमान समान के पेखा है पावन आहार जति जत धार सब विश्वचार हजार के देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक करती बिन एक ना लेखा है शुद्ध सबा दुरंद बास सासना दुरजान दलांगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंखा लेना हलांगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलांगे श्री बस श्री भगवान कृपावन त्याग जहान निदान चलांगे वीर अपार बड़े बरियार अबचारे सार की धार पशैया तोर देश मिले निर्मासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ दहार सो बातन चकचार लवैया साहिब श्री सबको श्री नायक जाचक ने एक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भविख भवान जपांगे जीव जिते जालमय थालमय पाल ही पालमय सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जातुन पापन के बहुपुंज खपाएंगे सात समूह प्रसन्न फिर जग सतर सभय अवलोक छुपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाथव जानत लोक राज कराएंगे कोट स्नान जातक दान अनेक स्वंबर साज भराएंगे ब्रह्मेश्वर विष्ण सचिवत अंत फसेजम फास भरेंगे जे न श्रीपद के प्रास है पग ते नर फेर न देह तरांगे कह भयो जो लो दो लोचन मूद गए बैठ रहो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियोलिय सास समंदरन लोग गयो पर लोग गवायो बास क्यों अभिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तनि ही पर पायो काहुला पाहन पूज तरो सिर काहुला लिंग लटकायो काहु लख रवाची दिशा में काहु पशाह को शीस नवायो कहु बुतान काओ पूजित है पास कहु मृतान काओ पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सभी ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कहु कहु बुतान काओ पूजित है पास कहु मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सभी ही जाग
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈਰ ਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਮਾਰਾ ਬਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਬ੍ਰਤਵਾਰਾ ਅਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ

सगरीषष्टिदीघाय अचम्बव्याजुगा स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरीतम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठ वत उत पाता सकल मलेश करो रणघाता जे अस तुजताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो कल गौ इक बार त्याय है ताके काल निकट लह ऐ है रचा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हव ताके ताब तनक मैं हर हव रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो ही दुष्ट छवाए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताहे उबारा जिन नार

सकता काम नित्य पूछे वे वे करे विचार अंधी रेत ज्ञान भूणी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे बजे वावे रूप करे शिगार ऊंचे कुके वादा गावे जो धका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार।

0: नानक मेरे शरीर का एक रात कृतवा हो जुग जुग फिर उठाइए ज्ञानी पूजेता हिस्सा जुरा संतोख का धर्म कृतवा हो त्रित रजते का जोर कृतवा हो द्वापर तक पै का सत कृतवा हो काल युग रथ गण का कूड़ा कीर्तवा हो महला
1: श्याम कहीं सितंबर स्वामी सच में आज है साच रहे सबको सच समावे।

0: पौड़ी साई हो दया
1: कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिस नु हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवान ता खसवे का महल पाए सी खसवे भावे सो करे मरु चुंदिया सो फल पाए सी ता दर के पैदा जाए सी ता दर के पैदा जाए सी
0: कोई गावे लागी ना दी।

0: छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे
1: जित सिर जाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु प्यारी साध संग जी साहबां दी रहमत होई है आप संगतां ने श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब फ्रीमोर तो सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह जी लाडी श्री दरबार साहिब वाले समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। आप हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हन सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्हां पासों बड़े प्यार नाल सरवण करिए जी। सो आउण वाले मंगलवार नूं साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्हां दे जो शहीदी पुरब हन ऐतवार शाम नूं श्री खंड पाठ साहिब आरंभ होणगे जिन्हां दीआं संपूर्णतावां मंगलवार नूं होणगीआं उपरंत जो विशेष दीवान सजणगे। सो सब संगतां ने वध तों वध हाजरी भरनी जी। नाल नाल बच्चों का गुरमत कैंप भी गुरु घर विखे चल रहा है सो आप जी वध तों वध अपने बच्चों नूं कैंप विच लैके आया करो जी। आओ कथा नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह।

अंचललाई तराया पाई पाव जल दुख संसार कर कृपा नजर निहालिया पाई की तोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार

0: असंख जाप असंख पाओ,
1: असंख पूजा असंख तप ताओ,
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ,
1: असंख जोग मन रहा दास,
0: असंख भगत

0: मंगे अलेखे
1: जंग प्रयाद संद
0: में समस्त प्रणासे
1: अकंजन नामे समस्त नवासे
0: कामंग विभूते समस्त।

असंग जाप असंग पाओ असंग पूजा असंग तप ताओ असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रहे उदास।

करे पंकार मन मट मन हट मती बुढ़िए गुरमुख सच सुतार गुर बिन क्यों तरिए सुख होए ज्यों भावे त्यों राख तू मैं अवर ना दूजा कोई रहाओ आगे देखो डोजल है पाछे हरियो अंगूर जिस ते उपजे तिस ते बिनसै कट कट सच भरपूर आपे मेल मिलावही सचे महल हदूर साहे साहे तो समला कदे ना विसारे ओ ज्यों ज्यों साहे मन वसै गुरमुख अमृत पियो मन तन तेरा तू तनी गर्भ निवार समियो जिन्ने जग त्यो पाया त्रे पवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मन मुख मुगद गुवार घट घट जोत निरंतरी बुझे गुरमत सार

जियो इंड प्रभ पास। श्री राग महला पहला। सुन मन मित्र प्यारे आ, मिल वेला है ए, जब लग जोवन सास है तब लग ए तन दे, बिन गुणन काम न आवई टह टेरी तन खे, मेरे मन लैला कर जाए, गुरमुख नाम सलाही है हम मैं निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख लिख बुझे भार, तृष्णा एनस अगली हो मैं रोग विकार, ओ वे परवा अतोलवा गुरमत कीमत सार, लख सियान पजे करी लख सियों प्रीत मिलाप, बिन संगत साध तरापी है बिन नावै दुख संताप, हर जप जीरे छुट्टी है गुरमुख चीने आप, तन मन गुर पै विचिया मन दिया सिर नाल, त्रे पवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सत गुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेख है सास ग्रास, अंतर गुरमुख तू बस है ज्यों पावे त्यों निर्जास, जिया रे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ, अंतर की गा जानिए गुर मिलिए संक उतार, मोया जित कर जाई है तित जीव दया मर मार, अनहद शब्द सुहावने पाई है गुर विचार, अनहद बाणी पाई है तै हो मैं होए विनाश, सतगुर सेवै अपना हो सतगुर बाणै तास, खड़ दड़गा पहनाई है मुख हर नाम निवास, जय देखा तै रव रहे शिव शक्ति का मेल, त्रिहो गुणी बंदी दिहोरी जो आया जग सो खेल, विजोगी मिल विछड़े मन मुख लह ना मेल, मन वैरागी घर वसै सच पै राता होए, ज्ञान महारस भोग वै बाहुड़ भूख ना होए, नानक ये मन मार मिल पी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला। ए मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोपान, शब्द ना पीजे साकता दुरमत आवन जान, साधो सत गुर जी मिले ता पाईए गुणी निधान, मन रे हो मैं छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगा मान रहो, राम नाम जप दिन से रात गुरमुख हर तन जान, सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान, नित एनस हर प्रभ सेविया सतगुरु दिया नाम, कुकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचे पचान, परमे भूला दुख कणो जम मार करे खुलहान, मनमुख

ते जन विरले संसार रहाओ ज्योति ज्योत मिलाई है सुरती सुरत संजोग हिंसा हम मैं गत गए नाही सह सब सोग गुरमुख जे सर मन वसे तिस मेले गुर संजोग काया कामन जे करी भोगे भोगन हार ते स्यों ने ओना की जही जोदी सह चलन हार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल्द पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अकाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगा जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमुख लै हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुली है पूरे तोल कीमत कने ना पाई है रिद माणक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सत्संग सतगुरु पाई है एन शब्द सलाहे रहाओ सच वखर तन रास लै पाई है गुर परगास ज्यो अग्न मरै जल पाए है त्यों तिश्ना दा संदास जम जंदार न लगई क्यों भौजल तरै त्रास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाई साकत सच न पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेले हैं सचे सच समाए मन में माणक लाल है नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है घट घट गहर गंभीर नानक गो पाईए दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परमे पाहे ना बिजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस होर कितै भगत ना होवई बिन सतगुर के उपदेश मन रे गुरमुख अगन निवार गुर का कहया मन वसै हौ मैं तृष्णा मार रहाओ मन माणक निर्मोल है राम नाम पत पाए मिल सत्संगत हर पाई है गुरमुख हर लिवलाए आप गया सुख पाया मिल सलल सलल समाए जिन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवै जाए जिस सतगुर पुरख न पेट्यो सो भौजल पचै पचाए ए माणक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाए जिन्हें सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सजान गुर मिल भौजल लंघिए दरगा पत प्रवान नानक ते मुख उजले तन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज कर हो वन जा रे हो वखर लिहो समाल तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल आगे साहो सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सौ देखो पतियाए रहो जिन्ना रास न सच है क्यों तिन्ना सुख होए खोटै वणज वणंजी है मन तन खोटा होए फाए फाते मिर्ग ज्यो दुख कणो नित रोए खोटै पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्शन होए खोटे जात ना पत है खोटे ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पारना फरमतिना हर जपला अगला निरभउ हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोवन और फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पवन केरे पत ज्यों ढोल ढल ढोल जुमन हार।

पवड़ी। बद फैली गै बाना खसम न जाने, सो कहिए देवाना आप ना पछाने। कलबर संसार वादे खपी है, गणना में बेकार पर मैं पची है। रात हो वह एक जाने, सोई सज से।

पाप बन बीज की पोट। काम क्रोध जीव में चोट, नाम विसार चले मन कोट। सच गुर की सच सीख, तन मन शीतल साच परीख।

गोड़ी महला पहला। जा तू जाए कहाँ ते आवे, कहे उपजे कह जाए समावे, क्यों बाध्य हो क्यों मुक्ति पावे, क्यों अविनाशी सहज समावे।

मन माए समाए गुरमुख मुक्तो बंद न पाए शब्द विचारे सुटे हर नाए तरवर पंखी बहु निसबास सुख दुखिया मन मोह विनाश साज बिहाग थके आगास ददता वे कर्म लिखास नाम संजोगी गोल थाट काम क्रोध फुट बेख माठ बिन वक्र सुनो कर हाट गुर मेर खोले वज्र कपाट साध मेरे पूर्व संजोग सच रहसे पूरे हर लोग मान तन दे ले सहज सुभाए नानक तिन कह लागो पाए।

अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सुभाए मेरा सौह मिले दर्शन रूप अपार मछली होवा जल बसा जीव जंत सब सार उरवार पार मेरा सौह वसे हौ मिलोगी बाह पसार नागिन होवा धर वसा शब्द वसे पौ जाय नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीपकी महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्त आखिए करते का होए विचारो तित कर गावो सोहिला सिवर हो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरपाओ का सोहिला हों वारी जाओ जित सोहले सदा सुख होए रहा नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कवन संभार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन अस ईसड़िया ज्यो होवै साहेब स्यों मेल कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन रा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिलिया हर मेला होई आपे मेल मिलावै सोई मेरा प्रभ साबिद आपे जाने हुक्म मिले शब्द पछाणे

राम गुण गावो निमख निमख हर हर ध्यावो आन सुनिए कत हो जाइये सत्संग बट भागी पाइये आठ पह आठ पहर जय बै आराध पार ब्रह्म ठाकर आगाद इया सदा सहेली हर गुण गावत रसन मोली बनास्पत मौली फल फुल पेड हेरा राती बहु न छोड़े आरस आरस लवे न लाई कहो नानक गुर पह सहाई गोड़ी गुरी मल्ला पंजम मन मंदर तन साजी बार एस ही मत है बसते अपार एस ही पीतर सुनियत साहो कबन पपारी जा को उहां विसाहो नाम रतन को कोवा पारी अमृत भोजन करे आहारी राम मंता ने अर्पित सेव करी दे कब सो जोगत जत हार भी जय पाए लागो तज मेरा तेरे कब सो जान जो सौदा जोरे महल साहा कहा किन बिद पावे कब सो बिद जत पीतर बुलावे तू बड साहा जा को ओट बन जा रे वाणज सो दाता लै संचारे खोजत खोजत निरकर पाया मोर रतन सच दिखलाया कर कृपा जब मिले साहे को नानक गुर कै वैसाहे गौड़ी महला

तुम रखो तुम ही रहना, जो तुम कहो सोई मुहे करना, जो जह पेखो तह तुम सरना, निरपो नाम जपो तेरी सरनाम, तू मेरी नाम निर तू भंडार, रंग रसा तू माने आधार, तू मेरे सोभा तुम संग रसिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया।

गुर किस्मत सुराणी सिमर सातर कुशल सब पाए कहर कर बाहर सुख सहस भाई राम सोई पिता तजने उपाया कर कृपा प्रभाव मिलाया

रस माहे सोबर सन पाए के स्वासे जन हर गुण गाए महात्मता सतबंध वो तुम मेरो प्राण आधार साध संग नानक वजे बिक तरिया संसार।

ब्रह्मेरे मोहे निर्गुण सगुण तेरे रहो पंचम खादी एक गरीबा राखो राकन हारे खेत करे और बहुत संतावे आयो सरन तुहारे कर कर हार्यो अनक बांधी छोड़े कतो नाही एक बात सुन ताकि ओटा साध संग।

के नो कछुआ करत करत ही बिरदानो हरिया अंत तन के नसुआ जम हो नम निबाला उते कटे नहीं रचसुआ ऐसा जग मोहे गुरे नखायो तो सरन भरियो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत मसायो दृढ़ी नानक दास भगतर जसुआ गौरी महला भजा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण तारा राहो अंतर कीमित तुम्हें जानी तुम्हें सज्जन सुहेरे सर्व सुखाम तुझते वाहे मेरे ठाकर अगै तौले परना सागो तुमरे रंगा गुण दान सुखदाते अगम गोचर प्रभन राशि

सबुना मनोबिसारे इहा उहा सर्व सुख दाता सकल कटा प्रत पारे रहौ महाकाश काटे खन पितर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुखर सरणी जलती अग्नि निवारे।

सद करिए रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिय रहाओ जित सात ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइये जो हो दयाल सतगुरु अपना ताय मत बुद्ध पाइये मेरे मन नाम लय जम बंद ते छूटे सर्व सुखा सुख पाइये

अंतर्ग कैसा दिखा चरणाय संसार पार ब्रह्म आराध्य उदर सा परवार साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हृदय दे औगुण सब मिटाए कै पार उपकार करे मार खजाना देव कर हर के चरण धान नानक दास हर तेरा प्रभु तुन मंगाए दान माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान नानक जाचक दर तेरा प्रभु तुन मंगाए दान एक ओंकार सतगुरु प्रसाद

अगर एक असुर मन है अचरज लखियो न जाई राव काम क्रोध मोह बासु प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल विनाशै ज्यो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहु राम सरनाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवै ऐनस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावै राहो पूत मीत माया ममता स्यों एव दया बंदा वै

नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरमुख होए तुम बाबो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख नहर गुन गावै राहो दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावै माया मोह मा संकट बन ता स्यो रुचि उपजावै अंतरवार सदा संग प्रभु का ता स्यो नेहु न लावै अंतरवार सदा संग प्रभु ता स्यो नेहु न लावै नानक मुख ताए तुम मानो जे काट

देखिया भोजन भाव हुक्म संजोगे निकर जाओ गर्भ गतं सुखमा आत्म त्याना जोत पै ज्योति माए समाना लिखत मिटे न शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न पुल

सब दृष्ट सब पर करी जिसके हृदय मत दे हरि अखंड कीर्तन तन भोजन चूरा कहो नानक जय सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजमा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना सो संग

बिनसत नाहीं छोड़ ना जाए, जय पिख तय रहया समाए। सुंदर सुगड़ चतर जी दाता, भाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार।